और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

0: नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर। आज के दिन
1: आपको पता है कि आज का दिन खास है कुछ अलग वजहों से भी। कोलकाता को औद्योगिक शहर हावड़ा से जोड़ने के लिए बनाए गए विद्यासागर सेतु को 1992 में आज ही के दिन यातायात के लिए खोला गया था और मानवीय कौशल का इसे एक अनुपम उदाहरण माना गया था उस दौर में। उस समय केबल से बना देश का ये सबसे बड़ा पुल था। हैप्पी बर्थडे कहना चाहेंगे हम प्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा को, और साथ ही आज जयंती है प्रसिद्ध लेखक आर के नारायण की भी। और इसके अलावा आज का दिन खास है, इसलिए खास है क्योंकि आज

एक ऐसा समझ लीजिए, एक शरीर का वो हिस्सा, एक ऐसा हिस्सा जिसकी तरफ हम सबसे कम ध्यान देते हैं, सबसे कम उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। कौन सी चीज़ है वो? हमारा मन है जी। मन की तरफ सबसे कम मन जाता है हमारा। आज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। अच्छा, कभी कभी इस फास्ट लाइफ में हमारी जो रफ्तार है वो

बहुत आगे चलना, बहुत दूर चलना बाकी है। वैसे भी इतनी सारी घटनाएं चारों तरफ हम देख पाते हैं, यूथ से जुड़ी हुई घटनाएं जो आए दिन अखबारों में आती हैं, तो ये सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से ही ये घटनाएं हैं। तो हर साल ये जो खास दिन है 10 अक्टूबर का जो दिन है, लोगों को जानकार बनाने और उनको सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। और इस दिन मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे मैं आपको अभी फिलहाल कह रही हूँ कि आइए हम बात करें, अगर हमारा दिल जो है वो उदास है, मन हमारा खराब है, तो चलिए ना हम किसी से बात करें, किसी की मदद लें। और मैं आपको बताऊं कि आजकल ऐसी हेल्पलाइंस उपलब्ध हैं जैसे कि टेलीमानस, जहां पर आप जुड़कर अपने दिल की बात साझा कर सकते हैं। आपका मन अगर उदास है तो उसको हल्का कर सकते हैं। इस साल का क्या थीम है आप जानते हैं? इस साल का थीम है जीने के अनुभवों को सुना जाए, वास्तविक आवाजें वास्तविक परिवर्तन, यानी लिव्ड एक्सपीरियंस हर्ड, रियल वॉइसेस रियल चेंज। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है अपने इर्द गिर्द बनाना बहुत जरूरी है, एक दूसरे से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। इससे कम जरूरी है फेसबुक इंस्टा पर स्क्रोलिंग करना, इसलिए उसे छोड़िए और रियल जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको गेन कीजिए, अपने दोस्तों से जुड़िए, बात कीजिए, मिलिए, बहुत फर्क पड़ेगा, यकीन मानिए मेरा। फिलहाल तो यही कहना चाहती हूँ आपको। नकश अजीज, देव नेगी, अमित मिश्रा और अमिताभ भट्टाचार्य के द्वारा, उनके मार्फत, कि आप चिंता करके कुछ भी नहीं पाएंगे, इसलिए क्या करना है बता रहे हैं आपको।

ऑनवर्ड्स यानी 10 बजे से सेल्फ आर्ट वॉल बाय चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटीज इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो बस जहां दिल करे वहां हो आइए, शहर की तमाम गतिविधियों की, तमाम इवेंट्स की, प्रोग्राम्स की जानकारी हम देते हैं आपको केवल और केवल

गुड आफ्टरनून, नमस्कार और सभी का स्वागत है दोस्तों 107 एफएम रेनबो पर। 3:04 हो चुके हैं और सभी को शुभ महालया। जी हाँ दोस्तों, महालया का दिन है, खुशी का दिन है दोस्तों, सेलिब्रेशन का दिन है। और आपका दोस्त आरजे अंकित ना आए रेडियो पर, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों मैं रहने वाला हूं आज के दिन यानी इस खुशी वाले दिन में 4 बजे तक आपके साथ इनका तड़का में। और दिन का तड़का में दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि क्या होता है, लाता हूँ ढेर सारे गाने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि जो आपकी जो शाम है ना, ये 3 बजे से 4 बजे तक की जो शाम है इसमें मैं गाने सुनाकर लगा सकूं तड़का। और इस तड़के से क्या होगा दोस्तों, होगा आपका मूड फ्रेश होगा, इंजॉयमेंट और एक्साइटमेंट से भरा हुआ होगा हमारे कार्यक्रम। तो चलिए बातें तो हो गई, अब शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम इस पहले ट्रैक के साथ। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक प्यार भरे गाने से शुरू किया जाए। तो चलिए सुनाता हूँ आपको ये पहला गीत।

फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से दोस्तों कार्तिक की आवाज में आप सुन रहे थे ये ट्रैक प्रीतम का कंपोजिशन नीलेश मिश्रा के बोल। और दोस्तों ये गाना सुनते सुनते मैं भी कहीं ना कहीं प्यार में डूब गया था। और अगर प्यार की बात चल रही है तो अगला ट्रैक अगर ना हो दोस्तों तो प्यार की जो बात है ना वो अधूरी अधूरी सी रह जाती है।

फिल्म आई हेट लव स्टोरी से दोस्तों श्रेया घोषाल की बहुत ही प्यारी सी आवाज और सुना महापात्रा की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक विशाल शेखर कंपोजिशन कुमार के बोल दोस्तों। और अगर प्यार की बातें चल रही है दोस्तों, प्यार के गाने बज रहे हैं, तो क्यों ना इस प्यार को ही कंटिन्यू किया जाए। और अगर आप किसी को अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट समझते हैं, किसी को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, तो अगला ट्रैक आपके लिए दोस्तों।

फिल्म अनजाना अनजानी से शेखर रवजियानी कह रहे समॉन चिरियोलिन क्या आवाज में सुन रहे थे ट्रैक विशाल शेखर कंपोजिशन अमिताभ भट्टाचार्य अनविता दत्त के बोल। और दोस्तों आज महालया पर ईडियन में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। जी हाँ, पश्चिम बंगाल सरकार इस बार महालया को ऐतिहासिक बनाने जा रही है। 10 अक्टूबर शनिवार को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। पहले चर्चा थी कि पीएम मोदी खुले वाहन में स्टेडियम की परिक्रमा करेंगे, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के कारण उनकी उपस्थिति नहीं हो सकी।

फिल्म खट्टा मीठा से कुणाल गांजावाला की आवाज में ट्रैक कंपोजिशन प्रीतम की, लिरिसिस्ट इरशाद कामिल दोस्तों। और आज है शुभ माहौल दोस्तों, कल से नवरात्रि का शुभारंभ और दुर्गा पूजा का भी शुभारंभ होने वाला है। तो ऐसे में मुझे मालूम है आप सबका मन कर रहा होगा डांस करने का, तो चलिए अगला ट्रैक उन लोगों के लिए जो दिल खोल के नाचना चाहते हैं।

चांस पे डांस से नीरज श्रीधर और सलीम शहजादा की आवाज में दोस्तों आप सुन रहे थे ट्रैक। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना केंद्र सरकार की एक बेहद किफायती टर्म इंश्योरेंस है, यानी जीवन बीमा योजना है। इसके तहत किसी भी कारण से पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगर इसकी बेनिफिट्स की बात करें दोस्तों, तो बीमा कवर में पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी यानी वारिस को 2 लाख रुपए की एकमुश्त राशि दी जाती है। इसके लिए आपको सालाना केवल 436 रुपए का प्रीमियम देना होता है। यह राशि सीधे आपके बैंक खाते से ऑटो डेबिट यानी अपने आप कट जाती है। ये बीमा कवर हर साल 1 जून से अगले वर्ष 31 मई तक के लिए वैध होता है, जिसे हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। इस योजना के लाभ 18 से 50 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक ले सकते हैं। हालांकि प्रीमियम भुगतान करने पर 55 वर्ष की आयु तक रिस्क कवर जारी रहता है। आवेदन के पास एक एक्टिव सेविंग बैंक अकाउंट यानी बचत खाता होना अनिवार्य है। बैंक खाते से आधार कार्ड का लिंक होना आवश्यक है। योजना में शामिल होने के पहले 30 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु दुर्घटना को छोड़कर पर क्लेम नहीं मिलता है। और अगर आपको इस आवेदन करना है तो आप अपने बैंक की नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप में लॉग इन करके सीधे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स सेक्शंस के तहत इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप अपनी नजदीकी बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस में जाकर PMJJBY का फॉर्म भरकर इसे ऑफलाइन भी शुरू करवा सकते हैं। 3:32 PM हो चुका है दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है। 3 का तड़का लगा रहा हूं, तड़का बैक टू बैक गाने सुनाकर रहने वाला हूं 4 बजे तक आपके साथ। सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों हम आज शुभ माल्य और

0: इस कार्यक्रम को दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो पर और साथ ही आप अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। डाउनलोड करना होगा एक छोटा सा ऐप, न्यूज ऑन एयर प्रसार भारती का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए, एंजॉय करिए हमारा कार्यक्रम।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 एफएम रेनबो पर तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 एफएम रेनबो पर, रेनबो पर।

फिल्म इश्किया से सुखविंदर सिंह और मीका की आवाज में ये ट्रैक लिरिसिस्ट गुलजार कंपोजिशन विशाल भारद्वाज की। भारतवंशी नवीनतम नवी पिल्ले को शांति का नोबल पुरस्कार। नॉर्वे की नोबल समिति ने 2026 का शांति पुरस्कार भारतवंशी नवीनतम नवी पिल्ले को देने का ऐलान किया है। दक्षिण अफ्रीका में जन्मी पिल्ले ने रंग भेद के खिलाफ लड़ने वाले नेल्सन मंडेला समेत कई लोगों की मदद की थी। पिल्ले को युद्ध अपराध और नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाने और अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करने के प्रयासों के लिए यह सम्मान दिया गया है।

कार्तिक कॉलिंग कार्तिक से शंकर महादेवन एलिसा मेंडोंसा लेकर आए थे ट्रैश शंकर एहसान लॉय का संगीत जावेद अख्तर के बोल और अर्जेंटीना से विदाई के बाद मेसी ने कहा सब कुछ हो गया। स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना के प्रशंसकों को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का उनका फैसला नहीं बदलेगा। 39 वर्षीय मेसी ने मंगलवार को बेनिन के खिलाफ 3-0 से मिली फ्रेंडली जीत में अपना 126वां गोल करके अर्जेंटीना के लिए अपना 208वां और आखिरी मैच खेला।

फिल्म बदमाश कंपनी से दोस्तों आप सुन रहे थे ट्रैक एक की आवाज में, प्रीतम का संगीत, अनविता दत्त के बोल। और दोस्तों जैसा कि दुर्गा पूजा बस आने ही वाली, मैं तो बोलूंगा एंजॉय करेगा एकदम, क्योंकि जिंदगी

फिल्म काइट से दोस्तों केके की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक कंपोजिशन राजेश रोशन नशीर फराज और दोस्तों सौराष्ट्र ने जाडेजा को रणजी ट्रॉफी के पहले मैच के लिए टीम में किया शामिल। सौराष्ट्र ने 4 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को छत्तीसगढ़ के खिलाफ रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले मैच के लिए अपना 16वें सदस्य टीम में शामिल किया है।

हाँ बोल दूंगा बोल दूंगा। आयशा से आप सुन रहे थे दोस्तों तोची रायना की आवाज में। ये ट्रैक कंपोजिशन अमित त्रिवेदी की, बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। दोस्तों वक्त हो गया कि मैं बढ़ चलूं अपने कार्यक्रम के लास्ट ट्रैक की तरफ, और इसी ट्रैक के साथ आपका दोस्त अंकित ले लेगा थोड़ी देर के लिए इजाजत, क्योंकि मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा FM रेनबो पर ठीक 7:02 पर। और अगर आप मुझसे फिर से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ FM गोल्ड पर 5:15 पर। और आखिरी ट्रैक के बाद अगला कार्यक्रम होगा स्ट्रक के बाद थोड़ी देर में आप लोगों के लिए, तो आपको कहीं नहीं जाना है और बस ट्यून करते हुए रहना है FM रेनबो।

गुड इवनिंग, नमस्कार और सभी का स्वागत है दोस्तों 107 FM रेनबो दिल से दिल तक पर आरजे अंकित आपके साथ साथ शाम के 7:04 हो चुके हैं दोस्तों। और आप सभी को सबसे पहले शुभो महालया। जी हाँ दोस्तों, आज है महालया और आपका दोस्त अंकित आ चुका है यहाँ पर कार्यक्रम लेके जाने अनजाने। दोस्तों बॉलीवुड की दुनिया भी कितनी दिलचस्प है। हम फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, अपने पसंदीदा सितारों के डायलॉग दोहराते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कई ऐसी कहानियां छिपी होती है जो किसी फिल्म की और भी खास बना देती है। कभी किसी गाने की रिकॉर्डिंग का किस्सा, कभी किसी किरदार के पीछे की कहानी, तो कभी किसी फिल्म की ऐसी छोटी सी बात जो पूरी फिल्म देखने के बाद भी हमारी नज़र से छूट जाती है। तो आज की इस शाम में कोशिश रहेगी कि हर कहानी के साथ आप कहें अरे वाह ये तो पता ही नहीं था। और शुरुआत करते हैं एक ऐसे गाने से जिसने दोस्ती, मस्ती और बेफिक्री को एक अलग ही अंदाज दिया। फिल्म है 3 इडियट्स और गाना है गिव मी सम सनशाइन। सुनिए और याद कीजिए उन दिनों को जब जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता होती थी अगला एग्जाम और दोस्तों के साथ बिताया हुआ वो वक्त।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

अभी आपने सुना दोस्तों गिव मी सम सनशाइन फिल्म थ्री इडियट्स से सूरज जगन शर्मन जोशी की आवाज में शांतनु मोहित्रा का संगीत स्वनंद किरकिरे के बोल। इस गाने की खासियत यह है कि यह सिर्फ कॉलेज लाइफ की परेशानी नहीं दिखाता बल्कि उस दबाव को भी आवाज देता है जिसे बहुत से स्टूडेंट्स महसूस करते हैं। और यही तो सिनेमा की खूबसूरती है, एक कहानी किसी एक किरदार की होती है लेकिन उससे जुड़ाव लाखों लोगों को महसूस होता है। अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने छोटे शहर के सपनों को बड़े पर्दे पर बेहद खूबसूरती से दिखाया। फिल्म उड़ान साल 2010 विक्रमादित्य मोटवानी के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी है जो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहता है। फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल के अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में भी दिखाया गया था। सोचिए एक ऐसी हिंदी फिल्म जो अपने संगीत और कहानी के जरिए सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि आजादी, परिवार और अपने सपनों के चुनने के अधिकार पर भी सवाल उठाती है। कई बार फिल्मों की कामयाबी सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से नहीं मापी जाती। कुछ फिल्में धीरे धीरे लोगों के दिल में अपनी जगह बनाती और वक्त के साथ उनकी अहमियत और बढ़ जाती है। इसी एहसास के साथ सुनते हैं उड़ान का एक खूबसूरत गाना।

फिल्म आजादियां से अमित त्रिवेदी, न्यूमान पिंचो, निखिल डिसूजा और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज में आप सुन रहे थे गीत अमित त्रिवेदी का, संगीत अमिताभ भट्टाचार्य की बोल। दोस्तों, कभी कभी किसी गाने का नाम ही पूरी कहानी कह देता है। आजादियां यानी आजादी, अपने फैसले लेने की आजादी, अपनी पहचान बनाने की आजादी। और अब एक सवाल आपसे, क्या किसी फिल्म का संगीत उसकी कहानी को और गहराई दे सकता है? बिल्कुल, कई बार बैकग्राउंड स्कोर और गाने वो बात कह जाते हैं जिसे किरदार शब्दों में नहीं कह पाते। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है रॉकस्टार। इम्तियाज अली की इस फिल्म में रणवीर कपूर ने जॉर्डन का किरदार निभाया और एआर रहमान के संगीत ने उस किरदार की बेचैनी को भी दिखाया है और उसकी जुनून और टूटने का एक अलग ही पहचान दी। फिल्म का संगीत आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और दिलचस्प बात यह है कि जॉर्डन का सफर सिर्फ एक संगीतकार बनने का सफर नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने भीतर की उथल पुथल को संगीत में बदल देता है। तो अब बारी उस गाने की जिसमें आवाज भी है, जुनून भी है और एक अलग ही ऊर्जा भी। और अगर दोस्तों आपके पास भी कोई दिलचस्प किस्सा है किसी फिल्म के बारे में तो आइए अब हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2213-1341। हमसे शेयर करिए कोई दिलचस्प किस्सा किसी फिल्म के बारे में जो आप जानते हैं।

फिल्म रॉकस्टार से दोस्तों मोहित चौहान की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक एयर हेवन का, संगीत इरशाद कामिल के बोल। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। और अब किसी गाने में किरदार को पूरी सोच और उसका विद्रोह सुनाई देने लगे तो वह गाना फिल्म से निकलकर लोगों की अपनी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अब चलते हैं एक ऐसी फिल्म की तरफ जिसने प्यार को बड़े बड़े वादों के बजाय छोटी छोटी बातों में तलाशा। फिल्म ये जवानी है दीवानी साल 2013। कबीर, नैना, अदिति और अवि चार दोस्त, चार अलग अलग स्वभाव और जिंदगी को देखने के चार अलग अलग तरीके। इस फिल्म की एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें यात्रा सिर्फ जगहों की नहीं है, किरदार भी अपने भीतर एक सफर तय करते हैं। कोई दुनिया घूमना चाहता है, कोई अपने रिश्तों में ठहराव तलाशता है और कोई ये समझने की कोशिश करता है कि आखिरी खुशी मिलती कहां से। और इसका संगीत भी इसी सफर का हिस्सा बन जाता है। प्रीतम का संगीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और अलग अलग गायकों की आवाज इस फिल्म को एक खास पहचान देती है। अब सुनते हैं ऐसा गाना जो दोस्ती, सफर और जिंदगी को खोलकर जीने का एहसास के साथ जुड़ गया।

फिल्म ये जवानी है दीवानी से अरिजीत सिंह की आवाज में दोस्तों आप सुन रहे थे ट्रैक प्रीतम का संगीत अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। 7:27 PM हो चुका है दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है जाने अनजाने आपके अपने चैनल पर यानी 107 FM रेनबो पर। दोस्तों जाने अनजाने में दोस्तों बात कर रहे हैं कुछ फिल्मों से जुड़े दिलचस्प किस्सों के बारे में और मैं रहने वाला हूँ 8 बजे तक, लेकिन दोस्तों हमारा कार्यक्रम जाने अनजाने रहने वाला है 9 बजे तक आपके साथ। और दोस्तों अगर आपके पास भी जाने अनजाने से जुड़ी कुछ जानकारी यानी कोई दिलचस्प किस्से अगर आपके दिमाग में है या आपके दिल में कुछ याद आ रहा हो किसी फिल्म से रिलेटेड, किसी फिल्म से जुड़े हुए दिलचस्प किस्से, तो आइए हमसे जुड़ सकते हैं आप। हमारा फोन नंबर है 2213-1341। कुछ गाने सुनकर ऐसा लगता है कि बस बैग उठाएं और निकल पड़े किसी ऐसी जगह जहां मोबाइल की घंटियां से ज्यादा खूबसूरत आवाजें हो और रोजमर्रा की भाग दौड़ से थोड़ा आराम मिले। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या एक फिल्म बिना किसी पारंपरिक हीरो हीरोइन वाली प्रेम कहानी के भी दर्शकों को बांध सकती है? इसका जवाब तलाशने के लिए चलते हैं साल 2015 के फिल्म पीकू की तरफ। सुजीत सरकार की इस फिल्म ने दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और इरफान खान ने ऐसे किरदार निभाए जो अपने स्वभाव में एक दूसरे से काफी अलग है। खास बात यह है कि कहानी रोजमर्रा की पारिवारिक परेशानियों और रिश्ते की नोकझोंक से अपना हास्य पैदा करती है। यहाँ कोई बहुत बड़ा खलनायक नहीं है, कोई दुनिया बचाने का मिशन नहीं है, फिर भी दर्शक किरदारों से जुड़ जाते हैं क्योंकि उनके रिश्तों में हम अपने आसपास की जिंदगी की झलक मिलती है। कभी कभी सिनेमा का सबसे बड़ा कमाल यही होता है कि साधारण सी जिंदगी को असाधारण तरीके से दिखाना। तो सुनते हैं पीकू का एक प्यारा सा गीत।

फिल्म पीकू से दोस्तों आप सुन रहे थे ये ट्रैक श्रेया घोषाल अनुपम रॉय की आवाज़ में, संगीत से सजाया था अनुपम रॉय ने, बोल से भी सजाया था खुद अनुपम रॉय ने। दोस्तों वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक ले लेते हैं और फिर गानों का सिलसिला रहेगा जारी, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए 107 FM रेनबो पर RJ अंकित के साथ।

0: जाने अनजाने।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों 107 एफएम रेनबो पर। आज अंकित आपके साथ 7:36 PM हो चुका है, रहने वाला हूँ 8 बजे तक, लेकिन हमारा कार्यक्रम रहने वाला है 9 बजे तक आपके साथ। और दोस्तों बात कर रहा हूँ जाने अनजाने में कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में हमारे बॉलीवुड फिल्म से जुड़े हुए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है, दिलचस्प किस्से हैं किसी फिल्म से, तो आइए हमारे साथ जुड़िए। हमारा फ़ोन नंबर है 2213-1341। दोस्तों पीकू के इस गाने के बाद अब एक और दिलचस्प सवाल, क्या आपको याद है किसी फिल्म में एक छोटा सा सहायक किरदार कभी कभी मुख्य किरदार जितना ही याद रह जाता है। कई बार फिल्म के सबसे यादगार पल वही होते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाने के साथ साथ हमें हंसाते हैं और चौंकाते हैं या सोचने पर मजबूर कर देते हैं। साल 2016 की फिल्म दंगल को ये लीजिए, महावीर सिंह फोगाट की कहानी और उनकी बेटियां गीता और बबीता के कुश्ती के सफर ने देश भर के दर्शकों को प्रभावित किया। फिल्म ने खेल, परिवार, अनुशासन और बेटियों को क्षमता को लेकर एक बड़ी चर्चा को जन्म दिया। फिल्म में आमिर खान, फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा के अभिनय ने कहानी को प्रभावशाली बनाया और संगीत ने भी इस सफर की भावनाओं को उभारने में अहम भूमिका निभाई। फिल्म का एक गाना ऐसा है जो सुनते ही मेहनत, अभ्यास और हार न मानने की जज्बा याद दिलाता है। तो आवाज बढ़ाइए और सुनिए दंगल का ये ट्रैक।

0: फिल्म दंगल से दोस्तों आप सुन रहे थे सरवर खान, सरताज खान और सैडी अहमद की आवाज में। ट्रैक प्रीतम का संगीत अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, और हमारे साथ एक दोस्त जुड़ चुके हैं, उनसे करते बात। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ नमस्ते, कौन है आज हमारे साथ फोन लाइन पे?
1: गुड इवनिंग भैया।
0: गुड इवनिंग।
1: नाम विश्रा से।
0: हाँ जी बोलिए जी। तुम
1: वैसे जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत दिन बाद में सुन रहा हूँ।
0: थैंक यू।
1: कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हो रहा है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जाने अनजाने।
0: हाँ हाँ।
1: तो इसके बारे में जाने अनजाने जो प्रोग्राम है जिसके पे मतलब बोलना चाहूंगा, इसका आज का जो प्रोग्राम है एक फिल्म है, फिल्म का नाम है पीके।
0: अच्छा।
1: अमित खान का ये वो वाला भी एक कॉमेडी टाइप का ही है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे फिल्म देखने में और देखे भी वो फिल्म को, है ना, कम से कम एक से दो तीन बार हम देख लिए उस फिल्म को। कॉमेडी फिल्म है ना तो अच्छा लगा, जो हम मतलब जितने कॉमेडी फिल्म आते हैं ना तो कम से कम हम उनको दो से तीन बार हम देख ही लेते हैं। एक वो हो गया धमाल बोल के एक तो फिल्म है ना संजय दत्त का।
0: हाँ, तो कॉमेडी फिल्म काफी पसंद करते हो।
1: जी बिल्कुल भैया। और साथ ही मैं पीके के बाद तो पीके फिल्म के बारे में, तो पीके फिल्म में जो अमीर खान का किरदार है बहुत ही अच्छा लगता है। एक मतलब जैसे कि यान मतलब आते हैं यान से तो हमारे पृथ्वी पे आते हैं तो वहाँ पे कैसे मतलब रहना है जो कुछ समझ नहीं आता है, तो ये सिंपल सा मतलब भाषा में बोलना चाहूंगा तो यही बोलना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं दूसरे देश जाते हैं ना तो वहाँ किस तरह बातें करना चाहिए, किस तरह है ना स्वभाव है मतलब देखना चाहिए, उस टेंशन सीखे हैं।
0: थैंक यू। और जीतू, हम हर फिल्म से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। अब बात करते हैं ऐसी फिल्म की जिसने हिंदी सिनेमा में देशभक्ति को एक बिल्कुल अलग भावनात्मक अंदाज में पेश किया। साल 2018 की फिल्म राजी, जिसमें आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया। ये कहानी एक युवा भारतीय महिला की है जो जासूसी मिशन के लिए पाकिस्तान में शादी करके जाती है। फिल्म में देश के प्रति कर्तव्य, निजी भावनाओं और नैतिक उलझनों के बीच का संघर्ष दिखाया गया। इस फिल्म का संगीत शंकर एहसान लॉय ने तैयार किया है और गीतकार गुलजार ने इसके गीतों को शब्द दिए। कई बार फिल्म का संगीत सिर्फ रोमांस या मनोरंजन के लिए नहीं होता, वह कहानी के भावनात्मक तनाव और किरदार की मन स्थिति को भी सामने लाता है। तो अब सुनते हैं राजी से एक बेहद खूबसूरत गीत।

दोस्तों आप सुन रहे थे फिल्म राजी से सुनिधि चौहान की आवाज में। ये ट्रैक शंकर एहसान लॉय का था, संगीत गुलजार और अलामा इकबाल के थे बोल।

7:47 PM हो चुका है दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ और कार्यक्रम चल रहा है जाने अनजाने, जहां पर दोस्तों मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं कुछ दिलचस्प किस्से हमारी फिल्मों से रिलेटेड। और अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प किस्से है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 2213-1341। और दोस्तों अभी इस गाने के बीच में आए थे राजकुमार तांतिया और उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी देशभक्ति वाले गाने काफ़ी पसंद आते हैं। रहने वाला हूं दोस्तों मैं आप लोगों के साथ इस कार्यक्रम में 8 बजे तक, लेकिन हमारा ये कार्यक्रम जाने अनजाने आपके साथ रहेगा जुड़ा हुआ 9 बजे तक।

दोस्तों, फिल्म में देशभक्ति सिर्फ सीमा पर लड़ने की कहानी तक सीमित नहीं होती। कभी ये अपने काम के प्रति ईमानदारी में दिखाई देती है, कभी किसी गलत परंपरा को चुनौती देने में, और कभी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में। इसी संदर्भ में याद आती है साल 2019 की फिल्म मिशन मंगल। ये फिल्म भारत के मंगलयान मिशन से प्रेरित है और इसमें वैज्ञानिकों की टीम के संघर्ष और उनकी उपलब्धि को दिखाया गया है। फिल्म की खासियत यह है कि विज्ञान जैसे विषय को आम दर्शकों के लिए मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया। अक्षय कुमार, विद्या बालन और बाकी कलाकारों ने कहानी में अलग अलग वैज्ञानिकों के योगदान को सामने रखा। और अब सुनते हैं फिल्म का एक ऐसा गाना जिसमें जोश भी है और आगे बढ़ने का संदेश भी।

0: खाना अगर बच जाए तो सुबह तड़का लगा के नाश्ते में दे दो। Why waste?
1: आपको होम साइंस और रॉकेट साइंस इस पे कोई फर्क नजर नहीं आता?
0: नहीं
2: सर, क्या कर रहे हैं?
3: चांद को करके रहेंगे आज ओवरटेक हम पूरा
2: चांद।

फिल्म मिशन मंगल से दोस्तों आप सुन रहे थे बेनी दयाल विवाह शराफ की आवाज में, ट्रैक अमित त्रिवेदी का, संगीत अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। दोस्तों दिल में मार से सुनकर एक बात तो साफ है, सपने चाहे कितने भी बड़े हों उनकी शुरुआत एक छोटे से विश्वास से ही होती है। अब चलते हैं साल 2022 के फिल्म ब्रह्मास्त्र पर। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में भारतीय पौराणिक विचारों, अस्त्रों की कल्पना और आधुनिक विजुअल इफेक्ट्स के साथ जोड़ने की कोशिश की। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म के निर्माण और उसके विजुअल्स पर काफी चर्चा हुई, लेकिन इसके संगीत की बात भी कम दिलचस्प नहीं है। प्रीतम ने संगीत दिया और फिल्म में रोमांस के साथ साथ एक काल्पनिक दुनिया का माहौल बनाने की कोशिश भी की है। और इसका एक गाना तो फिल्म के रिलीज के बाद काफी लोकप्रिय हुआ। इस गाने की धुन और अरिजीत सिंह की आवाज ने इसे एक अलग पहचान दी। सुनते हैं ब्रह्मास्त्र से एक रोमांटिक ट्रैक।

फिल्म ब्रह्मास्त्र से दोस्तों अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक प्रीतम का, कमिश्नर अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। दोस्तों केसरे के बाद अब वक्त है आज की शाम की कुछ यादों को फिर से ताजा करने का। आज हमने बात की थ्री इडियट्स, उड़ान, रॉकस्टार, ये जवानी दीवानी, पीकू, दंगल, राजी, मिशन मंगल और ब्रह्मास्त्र की। हर फिल्म का अपना अंदाज, अपना संगीत और अपनी कहानी है। किसी फिल्म ने हमें अपने सपनों के लिए लड़ना सिखाया, किसी ने रिश्तों की अहमियत सिखाई, किसी ने बताया कि अपनी आवाज उठाने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा होना चाहिए। अब आपके लिए एक सवाल, इस फिल्म में से किस फिल्म का संगीत आपको सबसे ज्यादा पसंद है? रॉकस्टार का या ये जवानी है दीवानी का सफर या दंगल का जोश? और अगर आपको किसी फिल्म के पीछे की कोई ऐसी कहानी मालूम है जो कम लोगों को पता है तो उसे भी याद रखिए, क्योंकि

फिल्मों की दुनिया में हर कहानी एक पीछे एक और कहानी होती है, कुछ जानी हुई कुछ अनजानी हुई, यही तो है हमारा जाने अनजाने। तो दोस्तों अब धीरे धीरे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। आज की इस शाम में हमने जाना कि फिल्मों को सिर्फ पर्दे पर देखना ही काफी नहीं है, कभी उनके संगीत को समझिए, कभी उनके किरदारों के फैसलों को, और कभी उन छोटी छोटी बातों को जो फिल्म को यादगार बना देते हैं। मैं अर्जुन जैन की तो उम्मीद करता हूं कि आज के जाने अनजाने में आपके कुछ नया जानने को मिला होगा और कुछ पुरानी यादों में ताजा हुई होंगी। आप सुनते रहिए 107 एफएम रेनबो, अपने आसपास की छोटी छोटी दिलचस्प बातों को देखिए, सवाल पूछिए और जिज्ञासु बने रहिए। तो दोस्तों बाय, टेक केयर, ए वेरी हैप्पी वीकेंड। मैं मिलूंगा आप लोगों से फिर दुर्गा पूजा पर, और 8:02 से फिर से दोस्तों जाने अनजाने में जुड़ जाइएगा, क्योंकि आने वाला है एक नया होस्ट आपके लिए।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम है छायालोक का दूसरा घंटा। जी हाँ, 8:03 और 26 सेकंड आपके साथ हूँ मैं संचिता। महालय की पावन बेला, गूंज उठा माँ का जयकारा। शिशिर सुबह, शिवली की खुशबू ले आई उत्सव का उजियारा। डाक की थाक सुनाई तो दे रही है, मन में भक्ति के दीप भी जल रहे हैं। माँ के आने की आहट जो है सुने, सपनों के रंग खिले हैं कुछ धुनों के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। आप सभी को महालय की शुभकामनाओं देते हुए आपके साथ हूं मैं संचिता। और पहला गीत इस कार्यक्रम का बाहुबली 2 से दलेर मेहदी, संजीव चिमलगी और राम्या बेहारा के आवाज में मनोज मुंतशीर ने लिखा और MM खिरवानी ने इसे संगीतबद्ध किया।
2: जियो

107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम है छायालोक। छायालोक का दूसरा घंटा आज है शनिवार, तो जाने अनजाने के बाद छायालोक का दूसरा घंटा है आपके लिए। तो 2213131341 डायल कीजिए और हमें बताइए आपको क्या सुनना है। फिलहाल मेरे साथ शामिल थी सुप्रिया जी। सुप्रिया जी हावड़ा से, और उन्हें सुनना है 20 साल बाद यानी कि बहुत पुराना एक गीत। उन्होंने दो ऑप्शंस दिए थे मुझे, तो सेकंड ऑप्शन जो है मैं आपका चुन रही हूँ अनुराधा पौडवाल मोहम्मद अजीज की आवाज़ में। उन्हें फ़ोन पर डायरेक्ट नहीं आना था, तो इसलिए मैं उनकी तरफ से सभी को ये गाना पेश करना चाहूँगी। आनंद बख्शी के लिखे हुए इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया। बहुत ही पुराना गीत है लेकिन बहुत ही खूबसूरत भी है, तो चलिए सुनते हैं इनकी तरफ से यानी कि सुप्रिया जी की तरफ से ये गीत आप सबके लिए। 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम है छायालोक संजता के साथ, 8:08।

0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक दूजे के अगर दिल में रहेंगे तो ही लोग याद करेंगे, क्योंकि हजार शिकायतें हमको जितनी भी हो, शिकायतों का मतलब ही नहीं बनता अगर हम एक साथ ना निभा पाए, है ना। तो 107 एफएम रेनबो पर इस वक्त हमारे साथ कॉलर फ्रेंड जुड़ चुके हैं और हम चाहेंगे उनसे बात करना। हेलो हेलो, नमस्कार आपको भी जी, बताइए कि मोनिरुद्दीन जी आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छा है
0: जी।
1: सबसे पहले आपको और सभी श्रोताओं को मोहल्ला का शुभकामना देना चाहता हूँ।
0: आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को भी, और बताइए इस पावन दिन पर आप क्या सुनाएंगे हमें?
1: आपको पता है तो नसीब अपना अपना फिल्म से कुमार की आवाज में,
0: अच्छा,
1: बहारों की
0: रंगीनी जी, और किसे सुनाएंगे? सबको,
1: पहले हमारे संचिता जी को
0: जी,
1: सभी श्रोताओं,
0: सभी श्रोताओं को,
1: हमारे संचिता जी और कमलनाथ गुप्ता
0: जी जी, हाँ, क्योंकि इस पहले वाले गीत में भी हमने प्यार बांटने की बात की, तो चलिए सबको सुनाते हैं, है ना। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे मोनिरुद्दीन लश्कर जी सकराइल से, और इन्होंने जिस गीत की फरमाइश की, नसीब अपना अपना फिल्म से, शबीर कुमार की आवाज है, एस एच बिहारी के बोल को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया। 8:16 आप जुड़े हुए हैं जिस कार्यक्रम के साथ, वो है छाया लोक का दूसरा घंटा। आज शनिवार है और आप हैं संचिता के साथ।

0: किसी की तस्वीर आप आंखों में बसाकर देखे तो सही, कैसा लगता है। चलिए आगे बढ़ेंगे ऐसे एक प्रेम गीत के साथ। कार्यक्रम है छायालोक और हमारे साथ जो दोस्त हैं फरमाइश करेंगे हमें जिस गीत की, वो है हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार। हेलो, आवाज आ रही है आपको?
1: हाँ, राजकुमार टाटिया कुछ बोल रहे हैं।
0: हाँ जी राजकुमार जी बताइए।
1: आपको ये मुकेश का एक गीत सुना दीजिए, फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे।
0: फूल बने अंगारे मुकेश जी की आवाज में। तो चांद आ ही भड़ेगा,
1: सुना सकता हूँ?
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: चांद आही भरेगा फूल खिलता मिले उसने की बात ली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आही भरेगा, ये गाना
0: क्या बात है। और सबको सुनाना चाहते हैं इस गीत को सब तक? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार तांतिया जी, इन्होंने नरेंद्रपुर से हमारे साथ ये जुड़े। फूल बने अंगारे से आनंद बख्शी के बोल को कल्याण जी आनंद जी ने सजाया इस गीत में। मुकेश की है आवाज, चांद आ ही भरेगा।

0: मतलब तारीफ की हाइट समझ लीजिए कि चांद भी तारीफ कर रहा है किसी के हुस्न का। तो चलिए ऐसे ही बहारों को पर ले चलते हैं आपको भी इन गीतों के जरिए। और ले जाने वाले कौन है हमारे अगले कॉलर देख लेते हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार सुनीता जी।
0: नमस्कार
1: जी, मैं मोहम्मद नासिर बिरियाघाटा से।
0: नासिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और बताइए कि क्या सुनाएंगे आज आप हमें।
1: जी, आज मुझे सुना है दूध का कर्ज का।
0: दूध का कर्ज।
1: बीन बजाऊं तुझे बुलाऊं।
0: हाँ हाँ, तो अचानक बीन की आवाज पसंद है आपको। बीन की आवाज से जो चीज निकल आती है वो तो नहीं पसंद, वो भी पसंद है।
1: वो कुदरत का एक देन,
0: कुदरत का ही हिस्सा है। हाँ बिल्कुल है,
1: कुदरत का एक देन
0: है। बिल्कुल है। चलिए, आप सभी को सुनाना चाहेंगे या कुछ गिने चुने लोग हैं?
1: बिल्कुल, मैं सभी लोगों को, अपने जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, मैं तमाम लोगों को सुनाना चाहूंगा, साथ साथ आपको भी मैं सुनाना चाहूंगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। शुक्रिया।
0: हमारे साथ थे नासिर साहब, मोहम्मद नासिर बिरियाघाटा से। और दूध का कर्ज ये है फिल्म का नाम, जिसकी फरमाइश उन्होंने की है मोहम्मद अजीज की आवाज में। बीन बजाऊं तुझे बुलाऊं, आनंद बख्शी ने गीत के बोल लिखे और अनु मलिक ने इसे संगीतबद्ध किया। 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम है छाया लोक के अंतर्गत फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। दूसरे घंटे में आपके साथ मैं हूं संचिता। चलिए साथ रहते हैं और इस सफर को पूरा करते हैं।

0: 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम है छायालोक, और छायालोक के अंतर्गत हम फरमाइशी गीत ले रहे हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि आप हमें अगला गीत कौन सुनाएंगे, कौन सा है? हेलो, हाँ
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं पूर्व वर्धमान बुधबुद से प्रवीर कुमार मंडल बोल रहा हूँ।
0: प्रवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। प्रवीर जी, ये बताइए कि आज का दिन कैसा बीता और क्या सुनाएंगे आज हमें?
1: आज तो पितृपक्षों का दिन था। मैं हम लोग आपका मैडम जी हम दोनों जाके तर्पण किया। उसका पिताजी भी गुजर गया, मेरा भी पिताजी गुजर गया। उसका आत्मा शांति रहे, उसके लिए हम लोग तर्पण किया। बहुत अच्छा लगा।
0: आप क्या करते हैं? आप करते क्या हैं?
1: हम ये आर्मी कैंप का ठेकेदार हूँ।
0: ओके,
1: करता हूँ। अभी आर्मी का साथ जुड़ा हुआ हूँ हम लोग, तो आर्मी कैंप में अभी फिलहाल मैं हूँ।
0: आपके आसपास वाले जो लोग हैं आर्मी कैंप में और हमारे जो श्रोता हैं, सबके लिए आप क्या सुनाना चाहेंगे?
1: ओ तो चिट्ठी का गाना सुना दीजिए, डाकिया डाक लाया, उसका यदि आपका पास है किशोर कुमार का तो यदि गाना सुना सकता है वो सुनाइए, नहीं तो चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, ये गाना भी सुना सकता है
0: पंकज उदास की आवाज में।
1: नहीं तो आपका पास जो है मैडम जी,
0: ठीक है ठीक है, हम चिट्ठी से रिलेटेड कोई ना कोई गाना आपको जरूर सुनाएंगे। आज पोस्टल डे है, इस वजह से आप इसकी फरमाइश कर रहे हैं।
1: हाँ,
0: जी जी
1: ठीक है, आप सुस्त रहिए, शांति रहिए मैडम जी, नमस्कार।
0: सब सब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व बर्धमान से प्रवीर कुमार मंडल जी, वो चिट्ठी से रिलेटेड कोई गाना सुनना चाहते हैं। नाम फिल्म का ये गाना मैं चूज कर रही हूँ इनके लिए। चिट्ठी आई है पंकज उदास की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया। 8:40, 16 सेकंड, आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ।

0: बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है ये जिंदगी, पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम आ जाए। लेकिन हाँ, चिट्ठियों के ज़माने में एक होता था कि कुछ सब्र होता था, लेकिन आजकल मैसेज अगर सही समय पर नहीं आए तो रिश्ते भी टूट सकते हैं। चलिए पॉजिटिव बातें करते हैं, और वो पूर्व वर्धमान से प्रवीर कुमार मंडल जी, पलकों की छाओं का जो गीत आप सुनना चाहते हैं, डाकिया डाक लाया, ये हम अगले कार्यक्रम में ज़रूर सुनाएंगे। अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं दोस्त, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि अगला गीत वो कौन सा सुनाने वाले हैं हमें। हेलो हेलो,
1: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग आपको भी।
1: आप से मतलब इतना खुशी है बात करते हुए कि इवनिंग का मॉर्निंग निकल जा रहा है।
0: ये बताइए, अपना परिचय दीजिए।
1: जी मैं परस पंडित चुचड़ा हुगली से बोल रहा हूँ।
0: परस जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। चुचड़ा से बोल रहे हैं आप, ये बताइए कि क्या सुनाएंगे।
1: जी सबसे पहले तो मैं सभी को और आपको शुभ महालय।
0: शुभ महालय,
1: आने वाले दुर्गा पूजा के आंतरिक शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल, आपकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, सभी को।
1: जी धन्यवाद दीदी। तो आपसे बहुत दिनों से बात करने की इच्छा थी, वो तमन्ना पूरी हो गई।
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके।
1: जी जी धन्यवाद दीदी। और इस वक्त मैं सुनना चाहता हूँ फिल्म जय राजा का टाइटल ट्रैक,
0: अनुराधा पौडवाल और विनोद राठौर की आवाज में जो है।
1: जी विनोद राठौर।
0: जी जी जी, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पारस पंडित जी।
1: धन्यवाद दीदी, आपका सभी प्रोग्राम में मतलब एकदम चाव से सुनता हूँ, और आपका मतलब बोलने का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही उम्दा है।
0: थैंक यू सो मच, आप लोग हैं इस वजह से हम भी हैं। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। आगे बढ़ेंगे जिस गीत के साथ, जिसकी फरमाइश की गई पारस जी ने की हुगली से, और सबको सुनाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है अनुराधा पौडवाल और विनोद राठौड़ की आवाज़ में है, ये डुएट गीत है। समीर ने लिखा इस गीत को और आनंद मिलन ने संगीतबद्ध किया। जिस कार्यक्रम के साथ आप जुड़े हुए हैं वो है 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम छायालोक का दूसरा घंटा संचिता के साथ।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक।
1: ससुर जी का गीत सुनकर बहुत टेंशन में आ गई थी। वैसे मैं सलाह कर लेते हैं ससुर जी से, वैसे तो दुल्हन दूल्हे राजा के घर ही जानी है, तो फिर किस बात की टकरार। घर की रोशनी कभी कम नहीं होती, रिश्तों की जो डोर है कभी कमजोर नहीं होती। ससुर जी जो है ना दोस्तों, आपके आशीर्वाद से ही जो है, ससुर जी के आशीर्वाद से ही जो है बरकत आती है और उनकी दुआएं ही काम आती हैं। तो चलिए सुलह कर लेते हैं, किसी के साथ भी हम टकरार नहीं रखना चाहते। फिलहाल हमारे साथ एक दोस्त हैं जो बताएंगे आपको कि अगला गीत कौन सा होने वाला है। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: हाँ जी बताइए, क्या सुनाएंगे आखिरी गीत आपका?
2: सिंदूर फिल्म से सावन बसंत बहार।
1: पतझड़ सावन बसंत बहार, अक्टूबर का महीना है तो सावन तो चला गया है, लेकिन ये गीत जो है ये सुनना बनता है। जी
2: गांडा में सुनते जाए पुदुत सामंत, संजीत पाल, विश्वनाथ गायन और मुनीरुद्दीन लश्कर को।
1: ओके, तो ये आखिरी गीत है इस कार्यक्रम का। अगले कार्यक्रम के साथ सभी लोग जुड़े रहेंगे और तब तक के लिए सुनते रहिए इस गीत को। वासुदेव जी जो फूलिया से इस गीत की फरमाइश की, उन्होंने सिंदूर फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया। आपके साथ थी मैं संचिता, सुनते रहिए और खुश रहिए।